0: पे घोड़ा,
1: रेडियो हेलसिंकी,
0: घोड़े की दुम पे जमा रहा हथौड़ा।
2: Wir sind da für jung und alt.
0: Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
2: Auf 92,6.